0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 8 बज्यो। यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्डन चिया।
3: आत्मिक अन्धकार र निराशाको क्षणमा सकारात्मक सन्देशले प्रेरित कार्यक्रम नयाँ

0: हरेक बिहान हरेक भेटघाट हरेक खुशीको साथ गोल्ड रिंग चिया त्रिशक्ति टी इंडस्ट्रीज द्वारा उत्पादित विगत 25 वर्ष देखि नेपाली उपभोक्ता को रोजाई में पर्न सफल चिया गोल्ड रिंग चिया 25 वर्ष को विश्वास हरेक कप में मीठो स्वाद गोल्ड रिंग चिया वरिष्ठ हाडचोर्नी तथा नशा बाथो विशेषज्ञ डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठको सेवा प्रत्येक दिन बिहान 8 बजेबाट नवदुर्गा क्लिनिक तथा चन्द्रगढ़ी मेडिकल भद्रपुर 7 लेखनाथ चोक फोन नम्बर 98-526-20-202 98-270-5387 साथै यहाँ रगत दिशा पिसाबको परीक्षण पनि गरिन्छ रेबिज विरूद्धको खोप पनि लगाइन्छ
1: सबिना कहाँ जान लागे कि
2: अरे यार दाईको बिहे छ गरगहना बनाउन रोशन सार सुनसारी पसल जान लागे कि नि

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले बिहानको 10 बज्यो। यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डरिङ चिया।

0: नागरिक एफएम 107.5 MHz वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक ट्रान्सिट
2: अहिले बिहानको 11 बज्यो
3: यस टाइम चेकका प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक टाइम चेक
2: अहिले दिउँसोको 2 बज्यो
3: यो टाइम चेकका प्रायोजक गोल्डन चिया

0: Extreme energy drink.
1: यो हो नागरिक एफएम एक्सप्रेस 7.5 मेगाहर्ज जन जन को बोली।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक सैनिक
2: अहिले दिउँसोको 4 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल
1: नागरिक फ्लैगशिप
2: अहिले अपराह्न 5 बज्यो
3: यस टाइम चेक का प्रायोजक गोल्ड रिंग चिया

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ज वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम्स अहिले साँझको 5:30 बजे हो।
2: नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिङ चिया।

लिनुहोस्। अब ओम साई पाथिबारा हस्पिटलमा हरेक दिन मनोचिकित्सक विशेषज्ञको उपचार तथा परामर्श सेवा, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सधैँ एक कदम अगाडि। सम्पर्क 98526 78 820, 98526 23 023।

0: नागरिक एफएम 107.5 मेगाहर्ट्ज वॉइस ऑफ द पीपल।
1: नागरिक टाइम
2: सेट अहिले बिहानको 5:30 बज्यो। नागरिक बुलेटिनको साथमा गोल्ड रिंग चिया।